0: दशमपहा अनुतुनाय दशमहत लखंड रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकीय हंड
1: विलाव पेरवरु दहयाई
2: विलाव ओपवेत किन आवे
3: वार्ता पिट वार्ता तबन कोट यटे एनएलबी दनडे तहने लुतराई रटे संवर्धनेट तनंत शक्तियक वेमिन ओबा दिनवा रटा दिनवट दन निदहने बिलदीगेन ओबा कोटिपतिय कुवन

सूत्र देशना बह महाकारुणिक बुदुरजानन वहन्से विसिन लोक सत्वया वेत अनुकंपावेन देशना करन लद आरक्षक परित्राण देशना अतरिन महा समय सूत्र देशनाव अति विशेष वूवकि तारका समूहयक पिरिवरा बेबलिन पूर्ण चंद्रयासे एदा कपिल वस्तु नगरा सन्ने महा वनपित एकालोक करमिन समस्त महा विश्व तलेम बुद्ध ज्ञा छत्रेट हसु करमिन पवत्मन लद मे देशना विशेषेन्म सज्जायना किरिन्ने सम्यक् दृष्टिक देवी देवताओं वहन्सेलागी एल्म बेल्महा आशीर्वादे अपेक्षा विने एदा बुदुरजानन वहन्सेगी श्रीपाद मूलेहि गौरवाभिवादन पूर्वकव दस दहसक चक्रावाट्यन सित सपमिनी महानुभाव संपन्न दिव्य गणया बुदुरतुन सरण गिय यम पिंवते वेनम ए अय किसीदा अपायगामी वन्नी नटे कियमिन बुद्ध प्रमुख श्रावक संग रत्नयट स्वकीय अत्यंत गौरवय पुदकलह मे वनाहि विश्वगत दिव्य शक्तिन एकराशी करमिन जीवितेत एलमिन सकलांतराय दुरुकुट सित शांतिय सलसीमेला महोपकारी वन परित्राण धर्मयके सियलु देवियन्के आशीर्वादय पिनिस ए महानुभाव संपन्न महा समय सूत्रय सतेहे सितिन सज्जायने करुण लबन्ने पूज्य गणी कुमरे शांत स्वामी वहन्से।